102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकें।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिकता।

0: प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। आरंभ करते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में इस भक्ति रचना से।
2: माँ, मास्टर जी ने क्या कहा?
3: मास्टर जी ने कहा कि तू पढ़ाई में बहुत तेज है, इतना कि तुझे स्कूल जाने की ही जरूरत नहीं है। तुम तो मास्टर जी से भी तेज हो।
2: मैं मास्टर जी

0: मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर था।
1: कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत है अनूप जलूटा के स्वर में।

भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम भक्ति धारा आप संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं अनूप जलोटा और साथी।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड, इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे अनूप जलोटा और साथी संगीत नियोजक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। लोक रंजनी कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवा रहे हैं अंगूरी नरवरिया और साथियों के गाए पारंपरिक बुंदेली लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं अंगूरी नरवरिया और साथियों के गाए पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। आइए सुने एक और रचना।

0: आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में आपने सुने अंगूरी नरवरिया और साथियों के गाए पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा

0: चुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अभी 7:21 पर आप सुनेंगे सुबह सवेरे कार्यक्रम में फिल्मी गानों के साथ कुछ सूचनाएं। वसुंधरा, ये पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम सुबह 8:30 प्रसारित होगा। प्रस्तुति राजकुमार कौशल की होगी। सुबह 9:00 विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम आप सुनेंगे और 9:30 एक फनकार कार्यक्रम में युगल गीत होंगे। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 हम भोपाल से रिले करेंगे। 10:05 पर होगा फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम गुना। प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल। 11:00 से विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

शाम 6 बजे सुगम संगीत में भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे और आज की शाम में फिल्म संगीत होगा शाम 6:30 बजे से। शाम 7:21 पर प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात होगी जिसमें बताएंगे बाग बगीचे कैसे लगाएं। सामूहिक कृषि चर्चा में मक्का का अधिक उत्पादन लेने संबंधी बातचीत होगी और भेंट वार्ता भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे कुछ पुंदरी लोकगीत। सुर्खियों में यह कार्यक्रम रात 8 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 8:15 बजे हमारे केंद्र से होगा फिल्म संगीत। रात 8:30 बजे से कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है, और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के

0: पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभा आईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले की प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे। सूचनाओं के साथ कुछ फिल्मी गाने लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रवीण शर्मा। सभी को नमस्कार। आगाज फिल्मी गाने से करते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम उपहार।
1: यहाँ राजा कहाँ है?
2: मैं एक राजा

प्रोग्राम का अगला गीत है सिलसिला फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल संगीत, शिवहरी का है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी की स्थानीय इकाई गीता संस्कृत स्वाध्याय मंडल गुना के तत्वावधान में 12 जुलाई रविवार को हनुमान कॉलोनी स्थित श्री शिव दुर्गा मंदिर में गीता स्वाध्याय सत्संग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होगा। बताया गया है कि सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक 1 से 11 तक का पूरा सामूहिक पाठ, व्याख्या और चिंतन मनन किया जाएगा। इस सूचना के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हीटवेव का असर समाप्त होने और मौसम सामान्य होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन फिर से पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा। आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र अब प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालन किए जाएंगे। इससे पहले अप्रैल 2026 में भीषण गर्मी और लू के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्रों के समय में अस्थायी रूप से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया था। आइए इस सूचना के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं अनवर का गाया गीत, महबूब सरवर का लिखा हुआ है, कमल राजस्थानी के बोल हैं, फिल्म का नाम मेरे गरीब नवाज़।

0: Muddles.
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनाने से पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। प्रारूप दावे आपत्ति 25 जून तक लिए गए, इसका निराकरण 2 जुलाई को किया गया। अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। इस सूचना के बाद आइए धर्मात्मा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं। इंदीवर का लिखा हुआ, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत तेज गतिविधियों पर 75 से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान कृमि पालन अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। पंजीयन करवाने के लिए वेबसाइट है https://eresham.mp.gov.in। इस पर आप पंजीयन करवा सकते हैं। और इस सूचना के बाद आइए कार्यक्रम का अगला गीत है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है लोफर।

1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच है। अधिक जानकारी के लिए अभिभावक और विद्यार्थी श्री रवि हरिदासन के मोबाइल नंबर 8839475988 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं कुर्बानी फिल्म से। मनहर उदास और आनंद कुमार की आवाज में बोल इंदिवर के हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

नवोदय विद्यालय से। हर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छठी में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट के माध्यम से ही किए जाएंगे। पात्र वही विद्यार्थी होंगे जिनकी जन्मतिथि

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं कुर्बानी फिल्म से। मनहर उधास और आनंद कुमार की आवाज में बोल इंदिवर के हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की प्रवीण शर्मा को दे अनुमति। नमस्कार, यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। थोड़ी ही देर में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के

0: उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से

0: FM।
1: यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अब प्रस्तुत है पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा। प्रस्तुत करता है राजकुमार कौशल।

नमस्कार, मेरा नाम है संयोगिता मालवीय और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन कारण, समस्या एवं समाधान पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु आखिर होती क्या है। जलवायु से आशय वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन से है, जिसमें किसी बृहद क्षेत्र की स्थायी मौसमी दशाएं जैसे ताप, आर्द्रता, वर्षा आदि होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। आइए अब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है, जिसकी समस्या से आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से आशय पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। आखिर इस वृद्धि की वजह क्या है? जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती हैं। इसी से जीवन संभव हो पाता है। यदि ये गैसें ना हो तो बहुत ठंड के कारण कृषि भी नहीं हो पाएगी और ना ही जीवन उपयोगी सहायक गतिविधियां संभव होंगी। किंतु क्या कारण है कि ये गैसें जो हमारे लिए इतनी उपयोगी व जीवनदायिनी हैं, यही हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं तथा ये एक संतुलित मात्रा में उतनी होती हैं जितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आवश्यक हैं। किंतु जब इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है तो ये संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन के लिए बहुत विकट समस्या बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मानव की अंधाधुंध बढ़ती औद्योगिक व अन्य गतिविधियां। इंसानी गतिविधियां सबसे बड़ी वजह हैं। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जमीन से निकलने वाली गैसें जैसे शेल गैस आदि। 1750 ईस्वी में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद वातावरण में 30% CO2 बढ़ गई है। 1750 से लेके 2022 तक 30% CO2 वातावरण में बढ़ चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य मानवीय कारण, जिनमें किसानों द्वारा अपनी फसलों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे पराली को जलाना, खुले में कचरा जलाना, वनों

का उन्मूलन, कृषि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग, परिवहन के साधन, कंक्रीट की सड़कें, इमारतें अधिक गर्म होती हैं, परमाणु परीक्षण, खदानों से निकलने वाली गैसें आदि। हालांकि प्राकृतिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों में लगने वाली आकस्मिक आग, किंतु ये बहुत कम मात्रा में घटित होने वाली घटनाएं हैं जिन्हें पृथ्वी अपने अनुसार समायोजित कर लेती है।

0: के तले।
1: जलवायु परिवर्तन की घटना दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है, जिसके कई दुष्परिणाम दृष्टिगत हो रहे हैं। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। सर्वप्रथम इसके पर्यावरणीय प्रभाव देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ध्रुवों पर जमी बर्फ होती है वह पिघल रही है, जिसके कारण मीठे जल के स्रोत घट रहे हैं, जिससे पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से समुद्री जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण तटीय शहरों व द्वीपीय जो देश हैं, आइलैंड हैं, उनके डूबने की समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जो समुद्री जीव हैं, जैसे कोरल रीफ, उनके अस्तित्व का भी खतरा बना हुआ है। जलवायु वैज्ञानिकों ने चुनौती दी है कि सन 2050 तक मुंबई जैसे शहर पूरी तरह डूब जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई जीव जंतु, पक्षी व कीटों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं व कई विलुप्ति की कगार पर हैं। जैसे भारत में पाया जाने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा, बाढ़, सूखा, बादल फटना, चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं। जंगलों में आग लगना, जिसके कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और मानव पशु संघर्ष बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे फसलों के पैटर्न में बदलाव आता है, मृदा का क्षरण होता है, भोजन की समस्या, फसलों में कीट लगना, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अनावृष्टि व अतिवृष्टि जैसी समस्याएं विकट समस्याएं होती हैं। ध्यातव्य है कि भारत की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ रही है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बाढ़, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, उत्तर पश्चिमी भारत में सूखा और मध्य व उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि हुई है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने से गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसी अधिकांश खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। वहीं पशुपालन भी कृषि से संबंधित क्षेत्र है, जिसमें पशुओं में रोगों के प्रति सुवेदिता, यानी पशु आजकल किसी भी रोग से बहुत जल्द ग्रसित हो जाते हैं, तथा पशुओं की प्रजनन क्षमता व दुग्ध उत्पादन में कमी पर भी प्रभाव पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक भारत के मानसून में 10% की वृद्धि हो जाएगी, यानी जो मानसून की बारंबारता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। गेहूं की उपज में सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्रों में 51% तक की कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पराग कण कीटों यथा तितलियां, मधुमक्खियां, इनकी संख्या में कमी आएगी, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, भुखमरी, गरीबी और किसान आत्महत्या जैसी घटनाएं भी बढ़ेंगी। सामाजिक जनजीवन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्यम निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसमें भारत जैसे देशों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 15 वर्षों में 45 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक निर्धन बना सकता है, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों में स्वास्थ्य की समस्या बढ़ी है, जैसे त्वचा कैंसर, आंखों में जलन, अस्थमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ी हैं, जिससे लोगों की औसत आयु घटी है तथा शारीरिक व मानसिक विकास भी अवरुद्ध हुआ है। जलवायु परिवर्तन ने आय असमानता में वृद्धि की है तथा इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए अब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईपीसीसी की स्थापना, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक वैज्ञानिक निकाय है, इसके अतिरिक्त यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड प्रोग्राम, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान 1988 और यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हुए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। वहीं वर्ष 2015 में COP21 यानी पार्टीज की जो बैठक है वो पेरिस में आयोजित की गई। पेरिस जलवायु समझौते में 195 देश शामिल हुए और पृथ्वी के तापमान को यानी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर करने की प्रतिबद्धता जताई गई। इसके बाद ग्लासगो समिट का आयोजन किया गया, जो COP26 बैठक थी। इस बैठक में चार प्रमुख

लक्ष्यों पर कार्य करने की बात कही गई। सदी के अंत तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना, 2030 तक उत्सर्जन में कटौती और सदी के अंत तक शून्य पर लाना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, जैसे कोयले के फेज आउट में तेजी से कमी लाना, यानी कोयले के उपयोग में तेजी से कमी लाना, वनों की कटाई को रोकना, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग, अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फंड जुटाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP27 का आयोजन मिस्र के शेख अल शेख में हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिंक जैसी अवधारणा सामने आई है, जिससे तापमान में कमी आएगी।

आइए अब नजर डालते हैं भारत के प्रयासों पर। भारत की सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल से ही पर्यावरण हितेशी रही है। हमारे यहाँ मानव पशु वृक्ष आदि के रूप में ईश्वर को पूजा जाता है तथा सभी जीव मात्र को पृथ्वी की संतान मानकर उनके साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भांति व्यवहार किया जाता है। भारत ने विभिन्न जलवायु सम्मेलनों में भाग लिया तथा समय समय पर जलवायु की समस्या से निपटने हेतु अपनी प्रबल प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ग्लासगो समिट में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2030 तक 40% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों की निर्भरता पर बल दिया है तथा भारत कार्बन न्यूट्रल बनने हेतु भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत ने 2008 में 8 जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अन्य प्रयास जिनमें पर्यावरण प्रभाव आकलन, राष्ट्रीय वनीकरण, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स और झीलों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डेजर्टिफिकेशन को रोकने हेतु कई प्रयास किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु प्रमुख सुझावों की बात करें तो वनीकरण करना, वनों की कटाई को रोकना, जैविक कृषि को अपनाना, जल संरक्षण करना तथा जल के अपव्यय को रोकना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचना, बिजली का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, फ्रीज एसी आदि का कम से कम प्रयोग करना, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना आदि कुछ प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर भी किए जा सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप या हम पर ना पड़ रहा हो, लेकिन अगर इस समस्या ने और अधिक विकट रूप लिया तो हम और आप इससे अछूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव कृषि, वर्षा, जलवायु, तापमान पर पड़ेगा और यह मानव जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्र के अस्तित्व को समाप्त कर देगी। अतः हम सबका यह कर्तव्य है और जीवन को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक भी है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं। ये प्रयास किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व द्वारा किया जाना आवश्यक है। आज आवश्यकता है अपने निजी स्वार्थ व विकास की अंधी दौड़ में औद्योगिक गतिविधियों से हो रहे पर्यावरणीय क्षरण को रोकने की। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति से उतना लें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन प्रदान करें। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा। प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ओर्दोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत।

0: نظیر۔ کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا۔
1: دیو آنند،
2: فوجی بھائیو، اپنے 30 برس کی فوجی زندگی میں میں نے کتنی فلموں میں کام کیا مجھے کچھ یاد نہیں، اس لیے کہ کام میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ پچھلا سارا ٹٹول ٹٹول کا کھوج نکالنے میں وقت جاتا ہے اور کام رک جاتا ہے۔ آگے کی رفتار تیز ہے اور رک کر پیچھے مڑ کر گزرے ہوئے مائل سٹونز کو کیوں گنا جائے۔
1: بیتے قریب 6 دشکوں سے زیادہ وقت سے وویدھ بھارتی پر گونج رہی ہے وشیش جے مالا۔
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो।
6: ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम युगल गीत। आइए पहले सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: कार्यक्रम का अगला युगल गीत है मोहरा फिल्म से। साधना सरगम और पंकज उदास के स्वर हैं, इंदिवर के बोल विजू शाह का संगीत।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी के बोल। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज अनुराधा पौड़वाल के साथ मनहर उदास की। फिल्म का नाम है हीरो।

कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है, आवाज अनुराधा पौड़वाल और उदित नारायण की।

धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों की हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10,31,00,000 रूपये से ज्यादा की राशि भेजी गयी। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुँचाई गयी। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे युगल गीत। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं जिले की चिट्ठी। थोड़ी ही देर में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह।